आई। रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई, कर कर देखा कीता अपना ज्यों तिस दी वड्याई। जो तिस भावै सोई करसी फिर हुक्म ना करना जाई।

नाउ साचे नाम की लागे भूख उत भूख है खाए चली है दुख सो क्यों विसरै मेरी माए साचा साहिब साच नाए रहाओ साचे नाम की तिल वडियाई आख थके कीमत नहीं पाई।

राग गुजरी महला चौथा हर के जान सतगुर सतपुरखा बिनौ करो गुर पास हम कीरे केरम सतगुर सरणाई कर दया नाम परगास मेरे मीत गुरदेव मोकौ।

खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड अवर ना कोई तू जोग जोग एको सदा सदा तू एको जी तू नेह चल करता सोई तुद आपे भावै सोई वरतै जी तू आपे कर है सो होई तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई।

सब होए, तुद बिन दूजा अवर ना कोए। तू कर कर वेखै जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला, तित सर वरड़ै पही ले निवासा। पानी पावक तिन्हें किया।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दै रक्षा पूरन होए चित की इच्छा।

आऊ। सेवक सिख हमारे तारिया है, चुन चुन सत्र हमारे मारिया है। आप हाथ दै मुझे उबरिया है, मरण काल का त्रास निवरिया है। हुजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जू करे हो रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंध दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर दस कंता।

काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पशानत। चिटी ते कुंचर असथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पशानै, काट काट के पट पट की जानै। जब उदकर्ख करा कर तारा, प्रजा धरत तब देह अपारा। जब आकर्ख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तार सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब तारै, आप अपनी बूझ उचारै। तुम सब ही तेरे।

आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूड उचारत पेदा, जाको पेव ना पावत बेदा। ताकौ कर पाहन

प्राचीनत न है पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत पिन पिन तो है तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप सरूपा, रंक पयो राव कही पूपा। अंडज जेरज से तज कीनी, उतपुज खान बहुर राच दीनी। कहूं फूल राजा हवै बैठा, कहूं सिमट पयो संकर इकैठा। सगरी सृष्ट दिखाए अचम

सिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण कहता जे अस तुज तब सरनी परे तिनके दुष्ट दुख तो हवै मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब तारे जो कल को एक बार त्याय है पाके काल निकट नह आय है रक्षा होए ताहे सब काला दोष।

मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन वजियां वादाइया राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईया शब्द ता गावो हरी केरा मन जिनी वसाया।

सुनहो संतोह शब्द धरहो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै, घर सुभागै शब्द वाजे कला जित घर धारिया।

0: सुनिहार सत्याकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
1: सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। फिरत फिरत प्रभु आया।

ने सम्मान प्राप्त किया है। सात संघ जी आप संगठन पता है कि नाथ साल सौ साल की कंस्ट्रक्शन चल रही है, जिस वे विकास इकट्ठा हो रहा है। सो बेअंत परिवार वालों $10,000, $20,000 सात संघ जी $5,000 गोल भेज पा रहे हैं। सो वो बड़भागे हैं जिन्होंने अपना दसान सफल करते हैं, गुरु दियां खुशियां प्राप्त कीतियां ने, असीसा प्राप्त कीतियां ने। तो सात संघ जी आप संगठन बेनती है कि जो सहज पाठ चल रहे हैं इन्हों का, जो भाई रजिंदर सिंह ने कहा कि गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने जो उन्होंने शहीदी दिवस होना उसके नेड़े जाके इन्हों के भोग पैणगे। बाकी जिहड़े जिहड़े वीर भाई भाई घर बैठ के आप सहज पाठ कर रहे हैं, नाल पाठ हर रोज करते हैं, उन्होंने बेनती है कि तुम जरूर भाई रजिंदर सिंह संपर्क करके अपना नाम और नंबर दे दियो ताकि भी अरदास जो प्रोग्राम है उन्होंने नाल ही उसमें भी जोड़िया जा सके। सो सात संघ जी आप संगत ने बेनती है कि आप संगत ने बेनती है कि June 2 है जन्म दिन संत बाबा संत दिलैर सिंह पिंडरा वाले का, उस दिन बेनती है सारी संगत जरूर आओ आके उन्होंने जो साडे वास्ते महान कुर्बानी की है उसनों याद करके उन्होंने श्रद्धांजलि भेंट करिए। सो सात संघ जी 1 तो लैके 7 तक जून तक हर रोज गुरु घर श्यामल की दरबार स्पैशल तौर पर रहा करेंगे और याद करेंगे उन्होंने जिन्होंने दरबार साहब के अटैच समय अपनी शादियां दे के कुर्बानियां दे के गुरु पंथ की शान और शक्ति कंपेयर रखने वास्ते हर कुर्बानी की है। तो सात संघ जी June 4 है दरबार साहब 1984 का अटैक हमला। सो सात संघ जी वे भी गुरु अर्जन देव जी का उदों प्रकाश पुरुष से बेअंत संगत गुरु घर दर्शन करने वास्ते आई हुई सन, जो उस समय के बेचारे लोग जिहड़े सन बगैर बगैर सूरे दर्शन आए हुए उस अटैक में काफ़ी सारे लोग जो शहीद सरकार ने किए सन। सो उन्होंने भी जरूर याद करिए। सात संघ जी आप संगत बेनती है कि June 5 है जन्मदिन प्यारे भाई मुकम सिंह जी का, आओ सारी संगत असी उन्होंने भी नमस्कार दे हुए जरूर उन्होंने जो महंत है उसको याद करिए, उन्होंने कुछ असी सीखने वास्ते कोशिश करिए। सो आओ सात संघ जी June 15 है संग्रांद जेठ हाड़ दे महीने की, उस दिन सारी संगत जरूर हाजिर हो ते आए महीने में जिया कहना है, महीने की सुख शांति चढ़ी करा वास्ते अरदास करनी है। सात संघ जी June 8 है गुरगद्दी श्री गुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी की, आके जरूर हाजिर भरो गुरु साहबों की बख्शियां दातों का धन्यवाद करिए, असी उन्होंने उत्साह मार्ग में अपनाने वास्ते कुछ ना कुछ कोशिश करिए। तो भाई मुख्य अपना भाई मनमोहन सिंह जी तैयार ने, उन्होंने बेनती करा कि वह की रम करने शर्म करिए। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह।

तना श्री महला पंजवा जह जह पैखो तह हजूर दूर कतहु ना जाई रब रहया सर्वत्र मैं मन सदा ते आई।

बिनस जाए जो निमख मह सो अलप सुख पनिए रहाओ प्रतपाले अपयाओ दे कच ऊन न होई सास सास संभालता मेरा प्रभ सोई।

है, प्रभु कै सिमरन सब किस सुझै, प्रभु कै सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभु कै सिमरन पूर्ण आसा, प्रभु कै सिमरन मन की मल जाय, अमृत नाम रिधमाय समाय, प्रभु जी बसै साध की रसना, नानक जन का दासन दसना, प्रभु को सिमरै से तनवंते, प्रभु को सिमरै से पतवंते, प्रभु को सिमरै से जान परवान, प्रभु को सिमरै से पुरख प्रधान, प्रभु को सिमरै से बेहमो ताजे, प्रभु को सिमरै से सर्व के राजे, प्रभु को सिमरै से सुखवासी, प्रभु को सिमरै सदा बनासी, सिमरन ते लागे जिन आप दयाला, नानक जन की मंगैर वाला, प्रभु को सिमरै से परोपकारी, प्रभु को सिमरै तिन सद बलहारी, प्रभु को सिमरै से मुख सुहावै, प्रभु को सिमरै तिन सूख बिहावै, प्रभु को सिमरै तिन आत्म जीता, प्रभु को सिमरै तिन निर्मल रीता, प्रभु को सिमरै तिन आनंद कनेरे, प्रभु को सिमरै बसे हर नेरे, संत कृपा ते अंदिन जाग, नानक सिमरन पूरे भाग, प्रभु कै सिमरन कार्ज पूरे, प्रभु कै सिमरन कबु न झूरे, प्रभु कै सिमरन हर गुण बानी, प्रभु कै सिमरन सह समानी, प्रभु कै सिमरन नह चले आसन, प्रभु कै सिमरन कमल बिगासन, प्रभु कै सिमरन अनहद चुनकार, सुख प्रभ सिमरन का अंत न पार, सिमरै से जन जिनको प्रभ मया, नानक जिन तिन जन सरनी पया, हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग बेद उपाय, हर सिमरन भये सिज्जति दाते, हर सिमरन नी चौकुंठ जाते, हर सिमरन तारे सब तरना, सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन कियो सगल आकारा, हर सिमरन मैं आप निरंकारा, कर कृपा जिसे आप बुझाया, नानक गुरमुख हर

किए बहुत जतना, पुण्य दान हमे बहुरतना, शरीर कटाए हमे कर दाती, वर्त नेम करे बहु पाती, नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार। नाव खंड पृथ्वी फिरै चिर जीवै, महा उदास तपीसर थीवै, अग्न माहे हुमत प्राण, कनक अश्व है वर भूम दान, न्योली कर्म करे बहु आसन, जैन मारक संजम असाधन, निमक निमक कर शरीर कटावै, तो भी हमे मैल न जावै, हर के नाम समसरकश नाहे, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे। मन कामना तीरथ छुटे, गर्भ मान न मनते हुटे, सोच करे दिन अर रात, मन की मैल न तनते जात, इस देही को बहु साधना करे, मन ते कभू न बिखिया टरे, जल तू वे बहु देनीत, सुध कहाँ हुए काची पीत, मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उतरे पतित बहुमूच। बहुत स्याणप जम का भाव व्यापै, जतन करे अनक जतन कर तृष्णा त्रापै, पेख अनेक अगन नहीं बुझै, कोट पाव दरगे नहीं सिजै, छूटस नाही उब प्याल, मोह व्यापे माया जाल, अवर परतूत सगली जम डान, गोविंद भजन बिन तिल नहीं मान, हर का नाम जपत दुख जाए ना।

सगल गटा के अंतरजामी अपनी गात मित जानो आपे आपन संग आप प्रवराते तुमरी उस्तत तुमते होए नानक अवना जान सकोए। सर्व धर्म मैं श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जब निर्मल कर्म सगल क्रिया मैं उत्तम किरिया सा संग दुर्मत मल हिरिया सगल उदम मैं उदम भला हर का नाम जपो जी सदा सगल बाणी मैं अमृत बानी हर को जसन दसन बखानी सगल थान ते ओ उत्तम थान नानक जे का।

अष्टपदी दस वस्तु ले पाछे पावे, एक वस्त कारण बिखोट गवावे, एक भी न दे दस भी हिरले, तो मूड़ा को का करे, जिस ठाकुर से ना ही चारा, तांको की जय सब नमस्कारा, जाके मन लगा प्रभ मीठा, सर्व सुख ताहू मन उठा, जिस जन अपना हुक्म मनाया, सर्व तुख नानक तिन पाया, अगंत सा अपनी दे रास, खात पीत बरते अनंत उलास, अपनी अमान कछ बरसा ले, अज्ञानी मन रोस करे, अपनी प्रतीत आप ही खोवे, बहुत उसका विश्वास न होवे, जिसकी बस्त तिस आज्ञा राखे, प्रभ की आज्ञा मन है मत है, उसते चौगुन करे निहाल, नानक साहिब सदा दयाल। अनक भांत माया के हेत, सर पर होवत जान अनेत, बिरकी छाया स्यो रंग लावे, ओ बिनसे ओ मन पछतावे, जो दिसै सो चालन हार, लपट रहो ते अंध अंधार, बटाओ स्यो जो लावे ने, ताको हाद न आवे के, मन हर के नाम की प्री सुखदाई, कर कृपा नानक आप ले लाई, मिथ्या तन धन कुटुंब सुभाया, मिथ्या हम मैं ममता माया, मिथ्या राज जुबन तन माल, मिथ्या काम क्रोध विकराल, मिथ्या रथ हस्ती अस बस्त्रा, मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता, मिथ्या त्रो मो अपमान, मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान, अस्थिर भगत सादगी सरन, नानक जप जप जी वह हर के चरण, मिथ्या स्वर्ण पर निंदा सुने, मिथ्या हस पर दर्प को हिरै, मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रै रूपाद, मिथ्या रसना पूजन अनस्वाद, मिथ्या चरण पर विकार को तावै, मिथ्या मन पर लोभ लुभावै, मिथ्या तन नहीं पर उपकारा, मिथ्या बास लेत बिकारा, बिन बुझै मिथ्या सब पए, सफल दे नानक हर हर नाम ले, बिरथी साकत की आरजा, साज बिना कह होवत सूचा, बिरथा नाम बिना तन अंध, मुख आवत ताके दुर्गंध, बिन सिमरन दिन रैन बिरथा बिहाय, मेघ बिना ज्यों खेती जाय, गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, ज्यों कृपन के निरार्थ दाम, धन धन ते जन जे घट बस्यो हर नाउ, नानक ताके बल बल जाउ, रहत अवर कश अवर कमावत, मन नहीं प्रीत मुखो गंडलावत, जानन हार प्रभु पर बीन, बाहर पेख ना काहू पीन, अवर उपदेसे आपना करे, आवत जावत जन्मे मरे, जिसके अंतर बसे निरंकार, तिसकी सीख तरह संसार, जो तुम पाने तिन प्रभ जाता, नानक उंजन चरण प्राता, करो बेंती पार ब्रह्म सब जाने, अपना किया आपे माने, आपे आप करत निबेरा, किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा, उपाव स्यानप सगल ते रहत, सब कज जाने आत्म की रहत, जिस पावे तिस लय लड़ लाए, थान थनंतर रहा समाए, सो सेवक जिस कृपा करी, निमक निमक जप नानक।

सो प्रभु सिमर सदा दिन रात। जे प्रसाद तेरी पत रहै गुर प्रसाद नानक जस कहै। जे प्रसाद सुनै करनाद जे प्रसाद पेखै बिस्माद। जे प्रसाद बुलै अमृत रसना जे प्रसाद सुख सहजे बसना। जे प्रसाद हस्त कर चलहै जे प्रसाद संपूर्ण फल है। जे प्रसाद परमगत पावे जे प्रसाद सुख सह समावे। ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लागो गुर प्रसाद नानक मन जागो।

प्रभ सो प्रसन्न बसै मन सोए, प्रभ दया ते मत उत्तम होए। सर्व निधान प्रभ तेरी मया, आपो कछु न किन्हु लया। जित जित लावो तित लगे हर नाथ, नानक इनकै कछु ना हाथ। सलोक

सात जना की अचरज कथा। अष्टपदी साध के संग मुख उजल होत, साध संग मल सगली खोत, साध के संग मिटे अभिमान, साध के संग प्रगटे सो ज्ञान, साध के संग बुझे प्रभ नेरा, सा संग सब होत निबेरा, साध के संग पाए नाम रतन, साध के संग एक ऊपर जतन, साध की महिमा बरने कौन पुरानी, नानक साध की शोभा प्रभ माहे समानी। साध के संग अगोचर मिले, साध के संग सदा पर फले, साध के संग आवे बस पंचा, सा संग अमृत रस पुंचा, सा संग हुए सबकी रेन, साध के संग मनोहर बैन, साध के संग न कथूं तावे, साध संग अस्थित मन पावे, साध के संग माया ते भिन्न, साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न, साध संग दुश्मन सब मीत, साधु कै संग महापुनीत, साध

साध के संग तजै सव्याप आपे जानै साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बनियाई। साध के संग ना कब हूं तावै साध के संग सदा सुख पावै साध संग बस्त अगोचर लह साधु कै संग अजर सह। साध के संग बसै थान ऊचै साधु कै संग महल पहुचै साध के संग दृढ़ सब धर्म साध के संग केवल पार ब्रह्म साध के संग पाए नाम निधान नानक साधु कै कुर्बान। साध के संग सब कुल उदार है साध संग साजन मीट कुटुम निस्तार है साधु कै संग सो तन भावै जिस तन ते सबको बरसावै। साध संग धर्म राय करे सेवा साध के संग सोबा सुर देवा साधु कै संग पाप पलायन साध संग अमृत गुण गायन साध के संग सर्वथान गम नानक साध के संग सफल जनम। साध के संग नहीं कशकाल दर्शन पेट तो होत निहाल साध के संग कलूकत हरै साध के संग नरक पर हरै साध के संग इहां उहां सुहेला साध संग बिचरत हर मेला जो इच्छै सोई फल पावै साध के संग ना बिरथा जावै पार ब्रह्म साध रिद बसै नानक उदरै साध सुन रसै। साध के संग सुनो हर नाम साध संग हर के गुण गाऊं साध के संग ना मनते बिसरै साध संग सर पर निस्तरै साध के संग लगे प्रभु मीठा साधु कै संग कट कर डीठा साध के संग लगे प्रभु मीठा साधु कै संग कट कर डीठा साध संग पै आज्ञाकारी साध संगत पई हमारी साध के संग मिटे सब रोग नानक साध भेटे संजोग। साध की महिमा बेद न जाने जेता सुने तेता बखियाने साध की उपमा तह गुड़ते दूर साध की उपमा रही भरपूर साध की शोभा का नाही अंत साध की शोभा सदा बेअंत साध

अष्टपदी ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जन्मै कमल अलेप ब्रह्मज्ञानी सदा निर्दोख जैसे सूर सर्व को सूख ब्रह्मज्ञानी के दृष्ट समान जैसे राज रंग को लागे तुलपवान ब्रह्मज्ञानी के तीरज एक जो बसदा को खोदे को चंदन लेप ब्रह्मज्ञानी का यह गुनाव नानक जो पावक का सह स्वभाव ब्रह्मज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागे जला ब्रह्मज्ञानी के मन हुए प्रकाश जैसे तर ऊपर आकाश ब्रह्मज्ञानी के मित्र सत्र समान ब्रह्मज्ञानी के नाही अपमान ब्रह्मज्ञानी ऊंचते ऊंचा मन अपने है सबते नीचा ब्रह्मज्ञानी से जन पय नानक जिन प्रभु आप करे ब्रह्मज्ञानी सगल की रीना आत्म रस ब्रह्मज्ञानी चीना ब्रह्मज्ञानी की सब ऊपर मया ब्रह्मज्ञानी ते कछ बुरा न पया ब्रह्मज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्मज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी ब्रह्मज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्मज्ञानी की निर्मल युगता ब्रह्मज्ञानी का पूजन ज्ञान नानक ब्रह्मज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्मज्ञानी एक ऊपर आस ब्रह्मज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्मज्ञानी के गरीबी समाहा ब्रह्मज्ञानी परोपकार माहा ब्रह्मज्ञानी के ना ही तंदा ब्रह्मज्ञानी ले तावत बंदा ब्रह्मज्ञानी के होए सुफला ब्रह्मज्ञानी सुफल फला ब्रह्मज्ञानी संग सगल उदार नानक ब्रह्मज्ञानी।

ब्रह्म ज्ञानी सदा सत जागत, ब्रह्म ज्ञानी अम्बुत्यागत, ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी के घर सदानंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेटा, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता, ब्रह्म ज्ञानी कह हुए चिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभु आप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइये, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइये, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माहे, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश, ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाय अध्याकर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकर, ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गद ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता, ब्रह्म ज्ञानी सत जीव नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी सलोक।

अष्टपदी मिथ्या नाही रसना पारस मन में प्रीत निरंजन दर्श पर त्रै रूप ना पेख्या नेत्र साध की टहल संगत संत संग।

भगवंत भगत का रंग, सगल त्याग दुष्ट का संग, मन ते बिनसे सगला भर्म, कर पूजे सगल पार ब्रह्म, साध संग पापा मल खुवे, तिस भगौती की मत उत्तम हुवे, भगवंत की टहल करे नित नीत, मंतन अर्पै बिसन परीत, हर के चरण हृदय बसावे, नानक ऐसा भगौती भगवंत को पावे। सो पंडित जो मन पर बुध है, राम नाम आत्म में सुध है, राम नाम सार रस पीवे, उस पंडित के उपदेश जग जीवे, हर की कथा हृदय बसावे, नानक सो हर की कथा हृदय बसावे, सो पंडित फिर जो न आवे, वेद प्राण स्मृत बुझे मूल, सुखम मैं जाने स्थूल, चा वरना को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा आदेश।

कर कृपा अंतर उरता रे, पास प्रेत मुगत पाथर को तारे। सर्व रोग का औखद नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गावो, काहू जुगत कितै ना।

स्वर्ण तैसी उसमाटी, तैसा अमृत तैसी बिख खाटी, तैसा मान तैसा अपमान, तैसा रंग तैसा राजान, जो बरताए साई जुगत, नानक ओ पुरख कही है जीवन मुक्त। पार ब्रह्म के सगले ठाव, जित जित कर राखै तैसा तिन्नाव, आपे करन करावन जोग, प्रभ पावै सोई फुन होग, पसर्यो आप होए अनतरंग, लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग, जैसी मत दे तैसा प्रगास, पार ब्रह्म करता अबनास, सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक पै निहाल। श्लोक उस्तत करे अनेक जन, अंत न पारा वार, नानक रचना प्रभ रची बहुविद अनक प्रकार। अष्टपदी कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्योहारी, कई कोट पहे तीर्थवासी, कई कोट बन प्रम है उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपीसर होते, कई कोट आत्म ध्यान तारे, कई कोट कब काब विचारे, कई कोट नवतन नाम त्यावे, नानक करते का अंत न पावे। कई कोट पहे अभमानी, कई कोट अंध अज्ञानी, कई कोट किरपन कठोर, कई कोट अभिग आत्म निकोर, कई कोट पर दर्ब को हिर है, कई कोट पर दुख न कर है, कई कोट माया शर्माहे, कई कोट प्रदेश प्रमाहे, जित जित लावो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना। कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प उपाय, कई कोट पाथर

दानव इंद्र सिर छत्र सगल समग्री अपने सुतारे नानक जिस जिस पावे तिस तिस निस्तार कई कोट राजस तम साकत कई कोट वेद सिमृत वेद पुराण सिमृत अरसासत कई कोट वेद पुराण सिमृत अरसासत कई कोट कीर्तन समुंद कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट किए चिर जीव कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीव कई कोट जख किन्नर पिसाच कई कोट भूत प्रेत सुगर मृगाच सब ते नेरे सब हूं ते दूर नानक आप अल्पत रहा भरपूर।

नाम संग तिन लिव लागी, कई कूड़ प्रभु को खोजनते, आत्म में पार ब्रह्म लहनते, कई कूड़ दर्शन प्रभु प्यास, तिनको मिलियो प्रभु अबनास, कई कूड़ मांग सत्संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिनको हुए आप सो प्रसन्न, नानक ते जन सदा तन।

कोट तत के बेते सदा निहारे एको नेत्रे कई कोट नाम रस पी वह अमर भये सद सद ही जी वह कई कोट नाम गुण गाव है आत्म रस सुख सह समा वह

नानक तिस बलहारणे जल थल मही अलसोय। अष्टपदी करन करावन करने जोग जो तिस भावै सोई होग। खिन में थाप उथापन हारा अंत नहीं किच पारा वारा। हुक्मे धार अदर रहावै हुक्मे उपजै हुक्म समावै। हुक्मे ऊंच नीच व्योहार हुक्मे अनक रंग प्रकार। कर कर देखे अपनी वडियाई नानक सब मैं रहा समाई। प्रभ पावै मानक गत पावै प्रभ पावै ता पाथर तरावै। प्रभ पावै बिन सास्ते राखै प्रभ पावै ता हर गुण पाखै। प्रभ पावै ता पुत उधारै आप करै आपन विचार। दुहां सरिया का आप स्वामी खेलै बिकसै अंतर जामी। जो पावै सो कार करावै नानक दृष्टि अवर न आवै। कहो मानक ते क्या हुए आवै जो तिस पावै सोई करावै। इसके हाथ हुए ता सब किछले जो तिस पावै सोई करे। अनजानत बिख्या मैं रचै जे जानत आपन आप बचै। पर मैं पूला दै दिस्तावै निमक माहे चार कुंट फिर आवै। कर कृपा जिस अपनी भगत दे नानक तेजन नाम मिले।

कबू नित करे बो भांत, कबू सोए रहे दिन रात, कबू महाक्रोध बिकराल, कबू सर्व की होत रवाल, कबू हुए बह बड़ राजा, कबू पेखारी नीच का साझा।

गले। अष्टपदी जिसके अंतर राज अपमान सो नरक पाती होवत सुवान। जो जाने मैं जो बनवंत सो होवत बिष्टा का जंत। आपस को कर्मवंत कहावै जन्म मरे बहु जून परमावै। धन भूम का जो करै गुमान सो मूर्ख अंधा अज्ञान। कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावै नानक इहां इहां मुक्त।

अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवै, हर दरगे कहु कैसे गवै, आपस को जो पला कहा वै तिसे पलाई निकट न आवै, सर्व की रेन जा का मन होए, कहु नानक ता की निर्मल सोए, जब लग जाने मुझते कछ होए, तब इसको सुख नाही कोए, जब एह जाने मैं किछ करता, तब लग गर्भ जोन मैं फिरता, जब तारै को बैरी मीत, तब लग नेह चल नाही चीत, जब लग मोह मगन संग माए, तब लग धर्म राय दे सजाए, प्रभ कृपा ते बंधन टूटे, गुरु प्रसाद

वह खप खप मरे बिना संतोख नहीं को राजै सुपन मनोरथ बिरथे सब काजै नाम रंग सर्व सुख होए बड़ भागी किसै प्राप्त होए करन करावने।

किच कीनो सो अपने रंग, सब ते दूर सब हूं कै संग, बुझे देखे करे विवेक, आपे एक आपे अनेक, मरे ना बिनसे आवे न जाए, नानक सद ही रहा समाय। आप उपदेसे समझे आप, आपे रचिया सबके साथ, आप कीनु आपन विस्तार, सब किच उसका ऊ करने हार, उसते भिन्न कहो हो किच होए, थान तनंतर एक कै सोए, अपने चलत आप करने हार, कौतक करे रंग अपार, मन मह आप मन अपने माहे, नानक कीमत कह न जाए। सत सत सत प्रभ स्वामी, गुर प्रसाद किने बखियानी,

अत सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घट घट सुनी श्रवण बखियाणी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्री।

संत के दुखन आरजा कटै, संत के दुखन जमते नहीं छुटै, संत के दुखन सुख सब जाए, संत के दुखन नरक में पाए, संत के दुखन मत होए मलीन, संत के दुखन सोबाते हीन, संत के हते को रखे न कोए, संत के दुखन थान प्रष्ट होए, संत कृपाल कृपा जे करे, नानक संत संग निंदक भीतर है, संत के दुखन ते मुख पवै, संतन के दुखन कागजू लवै, संतन के दुखन सर्प जोन पाए, संत के दुखन त्रिगत जोन किरमाए, संतन के दुखन तृष्णा में जलै, संत के दुखन सब को छलै, संत के दुखन ते सब जाए, संत के दुखन नीच नीच आए, संत दुखी का थाउ को नाहे, नानक संत पावै ता ओहि भी गत पाए। संत का निंदक महातताई, संत का निंदक खिंटिक न पाई, संत का निंदक महात्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राजतेहीन, संत का निंदक दुखी यार दीन, संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा बिजोग, संत की निंदा दुख में दुख, नानक संत पावै ता उसका भी होए मोक। संत का दुखी सदा पवित्र, संत का दुखी किसे का नहीं मैत, संत के दुखी को डान लागे, संत के दुखी को सब त्याग, संत का दुखी महंकारी, संत का दुखी सदा बिकारी, संत का दुखी जन्म मरे, संत की दुख ना सुखते टरे, संत के दुखी को ना ही ठाऊ, नानक संत पावे ता ले मिलाए। संत का दुखी अद बीज ते टूटे, संत का दुखी कित काज न पहुंचे, संत के दुखी को ध्यान परमाइए, संत का दुखी उजड़ पाइए, संत का दुखी अंतर ते थोथा, जो सास बिना मृतक की लोथा, संत के दुखी की जड़ किश नाही, आपन बीज आपे ही खाहे, संत के दुखी को अवर न राखन हार, नानक संत पावे ता लहे उबार। संत का दुखी यूं बिल लाए, जो जल बिहून मछली तड़फड़ाए, संत का दुखी भूखा नहीं राजै, संत का जो पावक इंधन नहीं त्रापै, संत का दुखी छुटे अकेला, जो बुआर तिल खेत माहे दुहेला, संत का दुखी धर्म ते रहत, संत का दुखी सद मितिया कहत, किरत निंदक का तुर ही पया, नानक जो तिस पावै सोई थया। संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए, संत के दुखी को दरगह मिले सजाए, संत का दुखी सदा सहकाई है, संत का दुखी ना मरे ना जीवाई है, संत का दुखी संत के दुखी की पूजे ना आसा, संत का दुखी उठ चले निराशा, संत के दुख न दृष्टे कोए, जैसा पावे तैसा कोई होए, पया कितना मिटे कोए, नानक जाने सच्चा सोए, साब कर तिसके ओ करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार, प्रभु की उस्तत करो दिन रात, तिसे त्यावो सास गिराज, सब किच वर्तै तिसका किया, जैसा करै तैसा को थिया, अपना खेल आप करने हार, दूसर कौन कहे बीचार, जिसनो कृपा करै तिस आपन नाम दे, बड़ पागी नानक जन से। सलोक तजो स्या

परमेश्वरी मन की टेक वृथि सब जान देवन को एक है भगवान जिसके दिए रहे काहे बहर न तृष्णा लागे आए मारे राखे एको आप मन कै किस नाही हाथ तिसका हुकम बूझ सुख होए तिसका नाम रख कंठ परोए सिमर सिमर सिमर प्रभु सोए नानक बिघन न लागे कोई उस्तत मन मैं कर निरंकार कर मन मेरे सत व्यवहार निर्मल रसना अमृत पियो सदा सुहेला कर ले जियो नैनो पेक ठाकुर का रंग साध संग बिनसै सब संग चरण चलो मार्ग गोबिंद मिटे पाप जपिए हर बिंद कर हर कर्म सरवन हर कथा हर दरगह नान पूजल मथा बडभागी ते जन जग माहे सदा सदा हर के गुण गाहे राम नाम जो करह बिचार से तनवंत गनी संसार मन तन मुख बोले हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी एको एक एक पछाने इत उत्कियो सोजी जाने नाम संग जिसका मन मानिया नानक तिने निरंजन जानिया गुरु प्रसाद अपन आप सुझै तिसकी जानो तृष्णा बुझै सा संग हर हर जस कहत सर्व रोग त्यो हर जन रहत अनदिन कीर्तन केवल बख्यान गृहस्थ मैं सोई निर्वाण एक ऊपर जिस जन की आसा तिसकी कटिए जमकी फासा पार ब्रह्म की जिसमन भूख नानक तिसै न लागे दुख जिसको हर प्रभु मन चित आवै सो संत सुहेला नहीं डुलावै जिस प्रभु अपना कृपा करे सो सेवक कहो किसते डरे जैसा सा तैसा दृष्टाया अपने कार्य में आप समाया सोधत सोधत सोधत सीजया गुरु प्रसाद सब बूझया जब देखो तब सब किश मूल नानक सो सुखम सोई अस्थूल न किच जन्मे न किच मरे आपन चलत आप ही करे आवन जावन दृष्ट अंदृष्ट आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ठ आपे आप सगल में आप अनक जुगत रच थाप उथाप अवनाशी नाही किश खंड धारण तार रहो ब्रह्मांड अलक अपेव परक प्रताप आप जपाए ता नानक जाप जिन प्रभ जाता सो सुभावंत सगल संसार उदरै तिन मंत प्रभ के सेवक सगल उदारन प्रभ के सेवक दुख विसारन आपे मेल लय कृपाल गुरु का शब्द जपै निहाल उनकी सेवा सोई लागे जिसनु कृपा करे बड़ भागे नाम जपत पावे विश्राम नानक तिन पुरुख को तुम करमान जो किच करै सो प्रभु कै रंग सदा सदा बसे हर संग सह सुभाए होवे सो होए करने हार पछाणे सोए प्रभु का किया जन मीठ लगाना जैसा सा तैसा दृष्टाना जिसते उपजे तिसमाए समाए ओए सुख निदान उनु बनाए आपस को आप दीनो मान नानक प्रभु जन एको जान सलोक सर्व कला भरपूर प्रभ बिरता जानन हार जा कै सिमरन उतरी है नानक तिस बलिहार इष्टपदी टूटी गांडन हार गोपाल सर्व जिया पे प्रतपाल सगल की चिंता जिस मन माहे तिसते बिरता कोई नाहे रे मन मेरे सदा हर जाप अब नासी प्रभ आपे आप आपन किया कछु ना होए जिसो प्राणी लोचे कोए तिस बिन नाही तेरे किच काम गत नानक जप एक हर नाम रूपवंत होए नाही मोहे प्रभ की जोत सगल कट सो है तनवंता होए क्या को गर्भ जहाँ सब किस तिसका दिया दरबै असुरा जे को कहा वह प्रभु की कला।

अष्टपदी। अब नासी प्रभ मन में राख, मानु की तू प्री त्याग, तिस्ते पर नाही किच कोए, सबने अंतर एक को सोए। आपे बिना आपे दाना, गहर गंभीर गही सुजाना, पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद, कृपा निधान दयाल बख्शेंद, सा तेरे की चरनी पाओ, नानक के मन एहो अनराओ, मनसा पूर्ण सरना जोग, जो कर पाया सोई होग। हरन परन जाका नेत्र फूर, तिसका मंत्र न जाने हूर, आनंद रूप मंगल सज्जा कै, सर्व तोक सुनिए करता कै, राज में राज योग में जोगी, तप में तपीसर ग्रस्त में भोगी, त्याए त्याए भक्त सुख पाया, नानक तिस पुरख का किनय अंत न पाया, जाकी लीला की मिथना है, सगल देव हारे अब गाहे, पिता का जन्म कै जाने पूत, सगल परोई अपने सूत, सुमत ज्ञान त्यान जिंदे, जनदास नाम त्या वैसे, तय गुण में जाको परमाए, जन्म रह फिर आवे जाए, ऊंच नीच तिसके स्थान, जैसा जनावे तैसा नानक जान। नाना रूप नाना जाके रंग, नाना पे करे एक रंग, नाना बिद कीनो विस्तार, प्रभ अविनाशी एक अंकार, नाना चलत करे खिन माहे, पूरयो पूर्ण सब ठाए, नाना बिद कर बंत बनाई, अपनी कीमत आपे पाए, सब कर तिसके सब तिसके ठाओ, जब जब जीवे नानक हर नाम, नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मंड, नाम के तारे स्मृत वेद पुराण, नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान, नाम के तारे आकाश पाताल, नाम के तारे सगलाकार, नाम के तारे बुरिया सब पवन, नाम के संग उदरे संश्रवन, कर कृपा जिस आपने नाम लाए, नानक चौथे पद में सुजन गत पाए। रूप सत जाका सत अस्थान, पुरख सत केवल प्रधान, करतूत सत सत जाकी बाणी, सत पुरख सम माहे समाणी, सत कर्म जाकी रचना सत, मूल सत सत उत्पत, सत करणी निर्मल निर्मली, जिसे बुझाए तिसे सब भली, सत नाम प्रभ का सुखदाई, विश्वास सत नानक गुरते पाई, सत बचन साधु उपदेश, सत्य जन जाके हृदय प्रवेश, सत नृत बूझै जे कोए, नाम जपत ता की गत होए, आप सत किया सब सत, आपे जाने अपनी मित गत, जिसकी श्रेष्ठ सो करने हार, अवर ना बूझ करत विचार, करते की मित ना जाने किया, नानक ज्योतिष भावै सो वर्तिया, बेसमन बिसम भय बिसमाद, जिन बूझया तिस आया स्वाद, प्रभ के रंग राज जन रहे, गुर के बचन पदार्थ लहे, ओए दाते दुख काटन हार, जाके संग तरै संसार, जन का सेवक सो बड़ भागी, जन के संग एक लिव लागी, गुण गोविंद

अपने सेवक के सर पर राखे, अपने दास को दे बढ़ाई, अपने सेवक को नाम जपाई, अपने सेवक की आपद राखे, ताकि गत में तो कोई न लाके, प्रभु के सेवक को न पहुंचे, प्रभु के सेवक ऊंचते ऊंचे, जो प्रभु अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दर्द इस प्रगटा।

गृहात मानस जतन करत भौ भात तिसके कर्तव्य बिरथे जात मारे न रखे अवर न कोए सर्व जिया का रख सोए काहे सोच करे रे प्राणी जब नानक प्रभ अलग बिनाणी बारंबार बार प्रभ जपिए पी अमृते हुमा तंत्र पिए नाम रतन जिन गुरमुख पाया तिशकिस अवर नहीं दृष्टाया नाम धन नामो रूप रंग नामो सुख हर नाम का संग नाम रस जो जंत्र बताने मंत्र नाम है नाम सुमान है उठत बैठत

जाना है, प्रभु अपने का हुक्म पछाना है, तिसकी महिमा कौन बखानो, तिसका गुण कह एक न जानो, आठ पहर प्रभ से हजूरे, कहो नानक से जन पूरे, मन मेरे तिनकी ओट ले, मन तन अपना तिन जन दे, जिन जन अपना प्रभु पछाता, सो जन सर्व थोक का दाता, तिसकी शरण सर्व सुख पावे, तिसके दर सब पाप मिटावे, अवर स्या

अष्टपदी संजना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार अवर पाव सब मीत विसारू चन कमल रिद में उतारू करण कारण सुप्रभ सम्राथ दृढ़ कर गहो नाम हर वथ यो तन संचो हो भगवंत संजना का निर्मल मंत एक आस राखो मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे। जिस तन को चार कुंड उठता वह सो तन हर सेवा ते पाव है जिस सुख को नित बांचे मीत सो सुख साधु संग प्रीत जिस सुबह को करह पली करनी सा सुबह पज हर की सरनी अनेक उपावी रोग न जाए रोग मिटे हर अवखद लाए सर्व निधान में हर नाम निधान जब नानक दर गए परवान मन प्रभु दो हर के नाए दै दिस ताव दया बैठाए ताको बिगन न लागे कोए जाके हृदय बसे हर सोए कल ताती ठांडा हर नाव सिमर सिमर सदा सुख पाओ पाओ बिनसे पूर्ण हुए आस भगत पाए आत्म प्रगास तित कर जाए बसे अबनासी कहु नानक काटी जम्फा।

हो कवन छुटकार, अस हस्ती रथ असवारी, झूठा टंब झूठ पा सारी, जिन दिए तिस बुझे ना बिगाना, नाम विसार नानक पछताना, गुर की मत तू ले याने, भगत बिना बो डूबे स्याने, हर की भगत करो मन मीत, निर्मल हुए तुम्हारो चीत, चरण कमल राखो मन माहे, जन्म जन्म के किल बिक जाहे, आप जपहो अवरा नाम जपावो, सुनत कहत

पशुपति जब कार्य कृष्ण दृष्टेता पाप तब कहते होता जब धारी अपन सुन समाद तब बैर विरोध के संकमात जब इसका वर्ण चिन्ह जापत तब हर शोक कहो किसे व्यापत जब अपन आप आप पार ब्रह्म तब मुंह का किस होत भरम अपन खेल आप वर्तीजा नानक करने हार न दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुकत कहो किसको गनी जब एके हर अगम पार तब नरक स्वरूप कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सह सुबाए तब शिव सकत कहो हो कित ठाए जब आपे आप अपनी ज्योत तरह तब कवन निडर कवन कत डरे आपन चलत आप करने हार नानक ठाकुर अगम पार अब नासी सुख आपन आसन तय जन्म मरण कहूं कहां बिनासन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कह हो किस होए जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अगोचर अगाते तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे अपन आप ही अचर जा नानक अपन रूप आप ही ऊपर जा।

मान कौन अभमान। जय स्वरूप केवल जगदीश तय छाल छेद्र लगत कहो कीस। जय जो स्वरूपी जो संग समावै तय किसे भूख कवन तृप्तावै। करन करावन करने हार नानक करते का नाही सुमार। जब अपनी शोभा आपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सत भाई। जय सर्व कला अपे परबीन तह वेद कतेब कहां को चीन। जब आपन आप उतारे तो शगन अब शगन कहां विचार। जय आपन ऊज अपन आप नेरा तय कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा। बेसमन बिसम रहे बिस्माद नानक अपनी गत जानो आप। जय अचल अचेद बेसमाया उहां किसे व्यापत माया आपस को आपे आदेश। तय गुण का नाही प्रवेश जय एक है एक एक भगवंता। तय कौन अचिंत किस लागे चिंता। जय अपन आप पत्यारा तय कौन कथे कौन सुनने हारा। बहु बेअंत ऊचते ऊचा नानक आपस को आपे पहुचा। जय आप रचियो प्रपंच आकार तह गुण मैं कीनो विस्तार। पाप पुनते पई कहावत को नरक को सुरंग बछावत। आल जाल माया जंजाल हमें मोह परम पै पार। दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार कियो बख्यान। आपन खेल आप कर देखे खेल संकोचे तो नानक एक है। जय अवगत भगत है आप जे पसरे पसार संत प्रताप। दो पाका पे तनी उनकी शोभा उन्हों बनी। आपे कौतक करे आनंद चोज आपे रस भोग निर्जोग। जिस भावे

इस पार ब्रह्म निकट कर पीक सास सास स्मरो गोविंद मन अंतर की उतरै चिंद आस अनित्या गोत्रंग संजना की धूर मन मंग आप छोड़ बेनती करहो सा संग अग्न सागर तरहो हरतन के पर लेहो पंडार नानक गुरपुरे नमस्कार खेम कुशल सहजनंद साध संग पज परमानंद नरक निवार उधारो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो चित चित वो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख पंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जिए का यह आधार उत्तम

हर रंग जय जय शब्द अनाहद वाजय सुन सुन आनंद करे प्रभु गाजय प्रगटे गोपाल महात के माथे नानक उदरे तिनके साथे सरन जोग सुन सरनी आए कर कृपा प्रभु आप मिलाए मिट गए बैर पए सबरेन अमृत नाम साध संग लैन सुप्रसन्न पए गुरुदेव पूर्ण हुई सेवक की सेव आल जंजाल विकारते रहते राम नाम सुरसना कहते कर प्रसाद दया प्रभु तारी।

जिस मन बसै सो होत निधान, सर्व इच्छा ताकी पूर्ण होए, प्रधान पुरख प्रगट सब लोए, सब ते ऊंच पाए अस्थान, बौर न होवे आवन जान, हर थनकार चले जन सोए, नान

बदलते उदास, सुंदर चतर तत का बेता, समदर श्री एक दृष्टेता, ए फल तिस जन के मुख पने, गुरु नानक नाम बचन मन सुने।

आपे आप निरंजन सोए, जिनसे व्यतिन पाया मान। नानक गाविये गुणी निदान, गाविये सुनिए मन रखिए भाओ, दुख पर हर सुख कर ले जाए। गुरमुख नादं गुरमुख वेदं, गुरमुख रिया समाई। गुर ईश्वर गुर गोरख बर्मा, गुर पार्वती माई। जे हों जाना आखा नाही, कहना कथ न जाई। गुरा एक दे बुझाई, सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर न जाई। तीर्थ नावा जे तिस पावा, बिन पाने के ना करी। जे तीस ठुपाई वेखा, बिन करमा के मिले लई। मत विच रतन जवाहर माणक, जे एक गुर की सिख सुनी। गुरा एक दे बुझाई, सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर न जाई। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खंडा विच जानिए नाल चले सब कोए। चंगा नाम रखा कै जस कीरत जगले, जे तिस नजर न आवई ता वात न पुछे। के कीटा अंदर कीट कर, दोषी दोस्त तरे। नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंतिया गुण देते हा कोई न सजई। जे तिस गुण कोई करे, सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ। सुनिए धरत तबल आकाश, सुनिए दीप लो पाताल। सुनिए पोहे न सकै काल, नानक भगता सदा विगास। सुनिए दुख पाप का नास, सुनिए ईश्वर ब्रह्मा इंद। सुनिए मुख साला हनुमंद, सुनिए जोग जुगत तन भेद। सुनिए सासत सिमृत वेद, नानक भगदास दा विगास। सुनिए दुख पाप का नास, सुनिए सत संतोख ज्ञान। सुनिए अठसठ का स्नान, सुनिए पढ़ पढ़ पावे मान।

सलामत निरंकार असंख मूरख अंध कोहर असंख चोर हराम खोर असंख अमर करजा हिजोर असंख गल वड हत्या कमाए असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़े यार कूड़े फिराए असंख मलेश मल पख खाए असंख

तूं सदा सलामत निरंकार असंख नाम असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख तह है सिर पार होए। अखरी नाम अखरी सालाहा अखरी ज्ञान गीत गुण गाहा अखरी लिखण बोलण बाण अखरा सर संजोग वखाण। जिन एह लिखे ते सरनाए जे फरमाए तिप तिप पाए जेता कीता तेता ना होवण नामै ना ही को थाओ। कुदरत कवन कहां विचार वारा ना जावा एक वार जो तुद पावे साई पलिकार। तू सदा सलामत निरंकार परिये हाथ पैर तन देहे पानी तो तै उतर सोखे। मूत पलीती कपड़ होए दे साबून लइए ओ तोए परिये।

आखै ईसर आखै सिद्ध आखै किते किते बुद्ध आखै दानव आखै देव आखै सुर नर मुन जन सेव किते आखै आकण पाहे किते कह कह उठ उठ जाए किते किते होर करहै ता आख न सकै के ई के जे वड पावै ते वड होए।

वारी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मंजी तै जगदीत आदेश सह आदेश आद अनिल अनाद अनाद जुग जुग एको वेश भुगत गया दया भंडारण कटकट बाजे नाथ आप नाथ नाथी सब जा की रिद सिद अबरासा।

अनाद अनिल अनाद अनाहद जुग जुगे को वेश। एका माई जुगत व्याई तिंचे ले परवान, एक संसारी एक पंडारी एक लाए दीवान। जिव तस पावै तिवै चलावै,

नदरी करम पवै निशान कच पकाई ओथे पाए नानक गया जापे जाय धर्म खंड काय हो धर्म ज्ञान खंड काय आखो करम केते पाउण पानी वै संतर केते कान महेश केतिया करम भूमि मेर केते केते धूप देश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश केते देवदा नव मुन केते केते रतन समुंद केतिया खाणी केतिया बाणी केते पात नरिंद केतिया सुरती सेवक केते नानक अंत ना अंत ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड तिथे नाद विनोद कोट आनंद शर्म खंड की बाणी रूप तिथे कारत कड़ी है बहुत अनूप ता किया गलना कथिया ना जाए जे को कह पिछे पछताए तिथे कड़िए सुरत मत मन बुद्ध तिथे कड़िए सुरा सिदा की सुध कर्म खंड की बाणी जोर तिथे होर न कोई होर तिथे जोत महाबसूर तिनमें राम रिया भरपूर तिथे सीतो सीता महिमा माए ताके रूप न कथने जाए ना ओह मरे न ठाके जाए जिनके राम वसै मन माहे तिथे भगत वसै के

सुबह जे था परम रूप पुनीत मूरत पूर्ण पुरख अपार सर्व विश्व रचियो स्वयंभू गण पंजन हार कालहीन कला संयुगत अकाल पुरख आदेश धर्म दाम सो परम रहत अभूत अलग अपेस अंग रागना रंग जाके जात पातना नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्तदायक काम आप रूप अमीक अनुस्तक आप रूप अमीक अन उस्तक एक पुरक अवदूत गर्भ गंजन सर्व अभंजन आद रूप असूत अंगहीन अभंग अनातम एक पुरक अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतिपार सर्व गंता सर्व हंता सर्व ते अनपेख सर्व साथ न जा नहीं जय रूप रंग अर रेख परम वेद पुराण जाके नेत पाकत नेत कोट सिमृत पुराण शास्त्र न आवही बहुचित मधुवार चंद प्रसाद

देवान देव उपमा महान। इंद्रान इंद्र बालान बाल, रंकान रंक कालान काल, अनभूत अभंग अनभूत अंग आभा भंग, गतमित अपार गुणगन उदार, मुनगन प्रणाम निर्भय निकाम, आत दुत प्रचंड मितगत आखंड, आलस्य कर्म आदृश्य धर्म, सर्वाभरणाडय अनडंडवाडय, चाचरी छंद त्व प्रसाद, गोविंदे मुकंदे उपारे अपारे, हरियंग करियंग निर्नामे अकामे भुजंग पर्यात छंत, चतर चक्र कर्ता चतर चक्र हर्ता, चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने, चतर चक्र वर्ती चतर चक्र भक्ति, चतर चक्र परती चतर चक्र पाले, चतर चक्र काले चतर चक्र वासे, चतर चक्र पासे चतर चक्र माने, चतर चक्र दाने चातुरी छंद, ना सत्रह ना मित्रह ना भरमंग ना बित्रह, ना कर्मंग ना काय अजन्मंग अजाए, ना चित्र ना मित्र परे है पवित्र, प्रति स आदि स अद्र स अक्र स भगवती छंद त्व प्रसाद कथते, के आ छिज जेथे के आ पिज पेछे, के आगंज कर्म के आबंज परमै, के आपज लोके के आदत शोक है, के अवदूत बरने के बेभूत करने, के राजंग प्रभाय के धर्मंग जाए, के अशोक बरने के सर्वा अपरने, के जगतंग कृति है के छत्रंग छत्री है, के बरबंग स्वरूप है के अनुभव अनूप है, के आद अदेव है के आप अपेव है, के चित्रंग बहीन है के कैदीन है, के रोजी रजा के रही मेरे हाक है, के पाक बेअब है के गैबल गैब है, के अफल गुना है के साहन साह है, के कारण कुनिंद है के रोजी दहिंद है, के राजक रहीम है के कर्मंग करीम है, के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है, के सर्वत्र माने के सर्वत्र दाने, के सर्वत्र गौने के सर्वत्र पौने, के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेस है, के सर्वत्र राज है के सर्वत्र साज है, के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है, के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो, के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेस है, के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है, के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता, के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी, के सर्वत्र राज है के सर्वत्र साख है, के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भूख है, के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है, के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है, के सर्वत्र मान है सदैव प्रधान है, के सर्वत्र जाप है के सर्वत्र थाप है, के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है, के सर्वत्र इंद्र के सर्वत्र चंद्र है, के सर्वंग काली में के परमंग ही में, के आकल अलाम है के साहिब कलाम है, के हुस्नल वजू है तमामल रजू है, हमें सुलसलाम है सलीकत मुदाम है, गनीमुल शिकस्त है गरीबुल परस्त है, बेलंदुल मकान है जमीनुल जमाने, तमीजुल तमाम है रजूअल निदाने, हरीफुल अजीम है रजाए करकीन है, अनेकुल तरंग है अपेद है अपंगे, अजीजुल नमाज है गनीमुल खिराज है, ने रुकत स्वरूप है त्रिमुकत विभूत है, प्रभुगत प्रभा है सोजुगत स्वरूप है, सोजुगत सुधा है, सदैव स्वरूप है अपेदी अनूप है, समस्तो पराग है सदा सर्वसाध है, समस्तो सलाम है सदैव अला काम है, निर्बाध स्वरूप है अगाध अनूप है, ओंग आद रूप है अनाद स्वरूप है, अनंगी अनाम है त्रिभंगी त्रिकाम है, त्रिभर्गंग त्रिबाधे अगंधे अगाधे, सुभंग सर्पागे सुसर्वानुरागे, त्रिपुगत स्वरूप है आछिज है अछूत है, के नरकंपणास है पृथ्वीओल प्रवास है, निरुकत प्रभा सदैव सदा है, विभुगत स्वरूप है प्रजुगत अनूप है, ने प्रभुगत अनूप है, निरुकत सदा है विभुगत प्रभा है, अनुकत स्वरूप है प्रजुगत अनूप है, छात्री छंद अभंग है अनंग है अपेक है अलेक है अपरम है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अभूत है अदूत है अनास है उदास है अधंध है अबंध है अपगत है बिरकत है अनास है प्रकाश है निचिंत है सुनिंत है अलिक है अधिक है अलेक है अपेक है अडाहा है अगाहा है असंभ है अगम्भ है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजाद है चपणतन त्व प्रसाद
सर्वंग हंता सर्वंग गंता, सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता, सर्वंग कर्ता हर्ता सर्वंग कर्ता, सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग, सर्वंग कर्मंग सर्वंग धर्मंग, सर्वंग युक्ता सर्वंग मुक्ता, रसावल चंत त्व प्रसाद। नमो नरकनाशय सदेवंग प्रकाशय अनंगंग स्वरूपे अभंगंग विभूते परमातंग परमाते सदा सर्वसादे अगास रूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे। ना पुत्र ना पुत्र ना सत्र ना मित्र ना तात ना मात ना जात ना पात न साकंग सरीक अमितो अमीक है। सदैव अंग प्रभा है अजय है अजा है भगवती चंत त्व प्रसाद। के जाहर जहूर है के हाजर हजूर है, हमेश्वर सलाम है समस्तुल कलाम है।

दिष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, कट कट के पटपट की जाने। जब उद करख करा कर तारा, प्रजा तत्व ध्येय पारा। जबया करख करत हूँ कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन सिरसव तारे, आप अपनी बूझ उचारे। तुम सभी ते रहत निरा

हर तेरा रचन रचया, सो हर मन ना वसाया, गुर प्रसादी हर मन मसया, पूरब लिखिया पाया, कहे नानक एहो शरीर प्रमाण होआ, जिन सतगुर सों चितलाया, ए नेत्र हो मेरियो, हर तुम मैं जो तरी, हर बिन अवर ना देखो कोई, हर बिन अवर ना देखो कोई, नदरी हर निहालिया, एहो वि संसार तुम देख के, एहो हर का रूप है, हर रूप नदरी आया, गुर प्रसादी बुझिया जा वेखा हर एक है, हर बिन अवर ना कोई, कह नानक ए नेत्र अंध से, सतगुल मिले दिव दृष्ट होई, ए सनम हो मेरियो सच सुन नैनू पटाए, सच सुन नैनू पठाए, शरीर लाए सुनो सतबाणी, जे सुनी मन तन हरिया, होवा रसना रसमाणी, सच अलग विदानी, ताकि गत कहीं न जाए, कहे नानक अमृत नाम सुनो पवित्र होवो, सच सुन नैनू पठाए, हर जियो गुफा अंदर रख के वाजा पौन बजाया, बजाया वाजा नौ द्वारे प्रकट किए, दसवां गुप्त रखाया, गुरुद्वारे लाए पावनी एक ना दसवां द्वार दिखाया, तह अनेक रूप नाव नव निदित सिद्धांत जाई पाया, कहे नानक हर प्यारे जियो गुफा अंदर रखे वाजा पौन मजाया, एहो साचा सोयला साचे कर गावो, गावो ता सोयला कर साचे, जिथे सदा सच त्यावे, सचो त्यावे जां तुत पावे, गुरमुख जिना बिजावे, एहो सच सबना का खसम है, जिस बख्शे सो जन पावे, कहे नानक सच सोयला सचे कर गावे, आनंद सुनो वडभागियो सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल विसूरे, दुख रोग संताप उतरे,

0: चेत तुम ही जा सदा कुर्बानी।
1: बोलना जी वाहिगुरु।
0: वाहिगुरु श्री भगवती जी सहाय। वाह श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक ले त्याए फिर अंगत गुरते अमरदास रामदासियां हुए सहाय अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख जाए तेक बहादुर सिमरे है कर नौने दावे ताए सब थाई होना सहाय दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी सब थाई होना सहाय दसा पातशाह की जोत। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन दार का ध्यान करके बोलना जी वाह। पंजा प्यारियां चौहा साहबजादियां चाले मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिना नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई देख बाई देख कैंडट कीता तिना प्यारियां सच्चियारियां दी कमाई दा ध्यान करके बोलना जी। जिना सिंगा सिंगणियां धर्म हे सीस दिते बंद बंद कटवाए खोपड़ियां लुहाईयां चरखियां ते चढ़ी आरिया नाल चराए गए गुरुद्वारा दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म ने हारिया सिखी सदके सा स्वासा संग निभाई तिना दी कमाई दा ध्यान करके बोलना जी। पंजा तख्ता सरबत गुरुद्वारियां का ध्यान करके बोलना जी। प्रथम है सरबत खालसे जी की अरदास है सरबत खालसे जी को वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु चितावे चितावन का सदका सर्व सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहिब तां तां रचिया रहा है देख देख फतेह बिरद की पैज पंथ की जी श्री साहब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलना जी। सिखां नूं सिखी दान केस दान विथेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान श्री अमृतसर साहब जी के दर्शन स्नान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार खालसा जी साहब बोलना जी। सिखां दा मन नीवा मत उची मत पतकार आखा अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दाता जीओ श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरुद्वारे गुरुधाम जिन्हां तों आप जिहां दे प्यारे खालसा पंथ नूं विछोड़िया गया तिन्हां दे खुले दर्शन सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो ने माण्यो के मान ताण्यो के तान न्योटियां की ओर न्यासरों के आसरे धन धन श्री गुरु नानक देव गोबिंद रूप सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी आप जिहां किचन कमला पास अरदास बेनती जोदड़ी आप जी का कोटान कोट शुकर लख लख धनवाद आप जी ने अपने पवित्र पावन खुले दर्शन दिदारे बख्श के समूह संतान निहाल किया है आप जी के हजूर अरदास बेनती जोदरी अमृत वेले के दीवान सजाए गए सजे हुए दीवाना विच पावन गुरबाणी श्री सुखमनी साहब जी के पाठ हुए पंज बाणिया के नितनेम हुए बाणी का पाठ करदे हुए अनेक ही प्रकार दियां भुलां गलतियां हो गया होणगे अनजान बच्चे समझ के बख्श लेना गो वास्ते सुध ते स्पष्ट बाणी पढ़न दी मत बख्शनी बाणी दा भाव दर आई साध संगत दे हिरदे वसाणा दर आई साध संगत दी हाजरी प्रवान करना तिल भुल पिटावां प्रवान करनिया अपना मेहर भरिया हथ रखना आप जी के हजूर कड़ा प्रसाद दी देग हाजिर है दर प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद सरबसा संगत विच वरते जो छके सतनाम श्री वाहिगुरु जपे आप जी अपना पवित्र पावन हुक्मनामा बख्श के समूह संगतां नूं निहाल करो ते हुक्मनामे ते चलन दी समर्था बख्शो अखरवाद काट पड़िया पुलचक माफ करना सरबत दे काज रास करने सही संत प्यारे मिलने जिना मिलिया तेरा नाम चितावे नानक नाम चढ़दी कला तेरे पास।

सामत देहो दयाल प्रभ जित तुम्हें आराधा नानक मंगे दान प्रभ रेन पग साधा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तनासरी महला पंजवां जह जह पेखो तैं हजूर दूर कतहू ना जाई रव रया सरबत्र मैं मन सदा त्याई। ए शब्द पावन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे 677 ते 78 ते समायमान है जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी।

विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नांगे फ्रहजंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेट हविडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद

0: मूर्ख पंडित हिकमत हुज्जत संजय करे प्यार धर्मी धर्म करे गावा वै मंगे मोक्ष द्वार जति सदा वै जुक्त न जाने छट बह करबार सबको पूरा पे हो वै घट न कोई आख पत परवाना पिछे पाई है ता नानक तोलिया जापे महला पहला
1: नानक सचविख सोई सब निशाला मारियां करता करे सोई अग जात न जोर है अग जियो नवे जिनकी पिले के पत्त बे चंगे से के पौड़ी तुर करम जना खुद उत्पाया।

जुग जुग फेर बटाइए ज्ञानी बुझता है। सजुग रस संतोका धर्म गरथवा हो, त्रित रस जत का जोर गरथवा हो, द्वापर तप का सत गरथवा हो, कल युग रतगन का उड़ गरथवा हो। महला पहला। साम कह सितंबर स्वामी सच में।

चली चंद्रावर कांक संजादम आया पार जात गोपी लै आया बिंद्रावन में रंग किया कल मैं भी दथर बन हुआ ना खुदाई लो पाया नील बस्तर ले कपड़े पहरे।

है तन फिटा भेंट करे मन झूठे चुली परे का नानक सच ते आई है सच हो है का सच पाए पौड़ी चित अंदर सब को देख रख दी एक लाएगा आपने बढ़ाइया आपने कर कर लाएगा।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरुप्रसाद दंडौत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक ते कर हाथ।

कतो न जाई। रब रहया सर्वत्र मैं मन सदा त्याई। एत ऊत नहीं बिछड़ै सो संगी गनियै, बिनस जाए जो निमुख मह सो अल्प सुख पनिया। प्रतपाले अपियाओ दे कछ ऊन न होई, सास सास संभालता मेरा प्रभ सोई। अशल अशेद अपार प्रभ ऊंचा जाकार रूप, जप जप करे आनंद जन आचार्य अनूप। सामत दयो दयाल प्रभ जित तुम्हें आराधा, नानक मंगै दान प्रभ

सत्संग जी। बोलो जी वाहेगुरु वाहेगुरु। एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वासी भगवती पाचे दसवीं प्रथम भगवती समर कहे गुरु नानक लई त्याय फिर अंकित गुरते अमरदास रामदास से सहाय अर्जुन हर गोबिंद सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण चाहे थे सब दुख जाए एक बहादुर से मरे कार नव निधि आवेता है सब ताई हुए सहाय दसवें पाचिया गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सब ताई हुए सहाय दस पाची ने पुत्र आत्म स्वरूप साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहब ने पाठ दर दत्ते अंतर के खालसा से बोलो जी वाहे गुरुवाज आप जी दे पांच प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्त हटिया जपिया तपिया जिन्हें नाम जपिया वंड छकिया दे चलाई तेरी वाहे दे के निड किया तेना प्यारे सत्यारे ने कमाई दत्ते अंतर के बोलो जी वाहे गुरु। जिन्ना सिंगा सिंगिया धर्म है सी दिते बंद बंद कटवाए खोपड़िया लवाइया चरखड़िया से चढ़े आर न चलाए गए गुरुद्वारे सेवा से कुर्बानियां की धर्म नहीं आ रहा से किसी तरीके से सत्संग लिभाया तेना नहीं कमाई जाते अंदर के बोलो जी वाहेगुरु। पंजाबत गुरुद्वारे जाते अंदर के बोलो जी वाहेगुरु। प्रथम है श्रीमद खालसा जी की अरदास है जी श्रीमद खालसा जी को वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु नाम चेता है जित आवण का सदका सर्व सुख हो जहां जहां गुरु खालसा जी साहब चंद्र चरियाए देख देख की फतेह बिंद की पैज पंथ की जी श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोलबाले बोलो जी वाहे गुरु। सिखानु सिखी दान केस दान रैत दान विवेक दान विशाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहब दर्शन स्नान क्योंकि यहां चंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु। सिखा का मन नहीं मन मत उची मत पद के राखे आप वाहे गुरु। गुरु की बनवाज पंथ सदा सिहाई दता दियो गुरुद्वारा ननकाना साहब पंजा साहब दौर गुरुद्वारे गुरुधाम जिन्हों तो आप जो पंथ में छोड़िया गया उन्होंने खुले दर्शन दी रात से आसमान ददान अपने खालसा जी ने बख्शो ये नोटिया दी ओट गुरु ने आसरिया दे आसरे गुरु धन धन गुरु ग्रंथता दोए कर जोड़ कर अरदास तुझ भावे ताने रास हे गिरिवाज जी आपके चरण कमला अरदास ने आप बख्श की है अमृत वेले प्रकाश मान संगत दर्शन दर देखे निहाल दरदार जी हो बेअंत बाणिया के पाठ हो अगले रागी सिंह ने आपके चरण आशा की वादे कीर्तन किए ने विद्वान वीर ने अज के हुक्मनामे की कथा चार की कृपा करो भूइया भुला चुका की माफी बख्शो पढ़ी हुई बाणी शोध के सच खंड प्रवान करो बाणी का भाव सारिया संगत हिरदय बसाने की वालता करो जी अगो तो शोध से पुत्र बाणी टाणी मन बुद्धि बख्शिश करो गुरुराज इस खुशी में आप जी बख्शियां दाता पुत्र कड़ाप शादी देगा तैयार करके हाथ में दतार आप जी भोग लाओ शीर प्रसाद सत्संग की रचना लायक हो जो जी सके स्वास स्वास आप जी का पितर नाम जब बख्शिश करो दतार दुखा कलेशा रोगों का नाश करो सुखा का प्रकाश करो देश प्रदेश रखा बख्शिश करो जी। गिरिवाज आप जी बख्शियां दाता जो लग रहा है चुट सवारियां प्रवान करनी गिरिवाज कृपा करो आप भी चरण सेवा कर रहे सारे टहली संघा सिंगड़िया तंदुरुस्ती बख्शो चाटी गल बख्शो सदा ही इस तरह अपने चरण सेवा की भावना बख्शो की पालता करो। गरीब नवाज जी कृपा करो अमृत वेले तो लैके दरते साफ सकता ने हाजरी दर प्रवान करो घड़िया लिखे लाओ सागतों का दर से तिरपुर पेटा प्रवान शुभकामना पूर्ण करो जी। गरीब नवाज कृपा करो खास समय से कम एकता स्वाग पे आज बख्शे करके सत दोष दास बख्शो चरण ना जोड़ो कुरबाणी का प्यार बख्शो हर मैदान जवान फतेह बख्शा की पालता करो जी। गुरु गरीब नवाज कृपा करो दूर दराज कराज बैठी लाइव खत्म की सरण करियां सारे संगत प्रवान करो घड़िया लेके लाओ सतारा आपने कृपा की संगत रुद्ध बख्शे ने संगत आपने चरना धनबाद करते हैं शुक्रिया अदा करते हैं बेहद आनंद गुरु घर गुरु घर सेवा संगत संगत माया पेटा कारी चरना प्रवान करो बख्शा साहब ने कमाइया सबल करो कार्य वार सार संगत शुभकामना सरबा पूरी करो जी मेहनत कराओ सेवा प्रवान करो भुला चुका बाई बख्शो पितर गुरु नवे बख्शे ग्रंथ लड़ी वार सैठ पाठ करने वास्ते आग्ञा बख्शो रहते कर सवार के चरण दरवाजे बनाओ शुद्ध से पुत्र सवाल आने के बाद दतार सही प्यारे मेरो दिन हमने आपका नाम जता नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा आज्ञा भई अकाल की तभी जलायु सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की दे जो प्रभु को मिल बोझ है खोज शब्द मैं।

मनसदाते आई जह जह पेखो तै हजूर दूर कतहु ना जाई रब रहया सर्वत्र मैं।

0: सो संगी गनिय बिनस जाए जो निमख में है सो अलप सुख पनिय रहाओ प्रतपाले अपयाओ दे कछ ऊन न होई सास सास सम्मालदा मेरा प्रभ सोई अचल अचेद अपार प्रभ ऊंचा जाका रूप जप जप करह आनंद जन अचरज आनूप सामत देहो दयाल प्रभ जित तुम्हें आराधा नानक मंगे दान प्रभ रेन पग साधा सामत देहो दयाल प्रभ जित तुम्हें आराधा नानक मंगे दान प्रभ रेन पग साधा वाहिगुरु जी का वाहिगुरु जी की
1: फतेह। और सत्कारयोग शाह संघ जी माने कृपा की त्यार संगत ने बड़ी श्रद्धा भावना सहित मारे निघी उदाना मारने होया अमृत वे तो लैके पितुर गुरबाणी आशा की वार सबून की सर्व की उपरंत अज हुक नवी कथा चार विद्वान ने तो सर्व की अरदास भरिया ने उपरंत महाराज के बख्शे पितुर का में सरवण किए हैं सतसंग दिश्वासम गुरु साहब ने आप साहब गुरु मुखात्मा बख्शिश किया है आप सतसंग दिया फिर पता है कि हर रोज तुम लड़ीवार साहब पाठ सर्व कर रहे हो इन्हों के भोग पैणगे गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने गुरु अर्जन देव जी के शहीदी ने दिवस के नेड़े जाके सो जिहड़े नाल हर रोज सतसंग जी तुम सहज पाठ आरंभ किए ने नाल कर रहे हो हर रोज आप सब भाग्य हो और सतसंग जी किसी इस सहज पाठों के बारे इन्फॉर्मेशन लैनी हो तुम सैकटरी साहब भाई रजिंदर सिंह जी वंग साहब संपर्क करके तुम अपने नाम टैलीफोन दर्ज करवा सकते हो सो इन्हों वो आप संगत बेनती है तो सतसंग जी होर संगत बेनती है कि जून दो है सतसंग जी जून एक तो लैके सत तक स्पैशल कीर्तन दरबार हो रहे हैं जो नींदा सक्का तारा दरबार साहब से अटैक होया संबंध में हर रोज एक तो लैके सत जून तक सत कीर्तन होने हर रोज शाम के तो जून दो है जन्म संत बाबा जन्मदिन संत बाबा जरनैल सिंह जी पिंडा वाले का तो उस दिन जरूर मनावे जरूर संगत ने कृपालता करनी है तो सतसंग जी जून चार है अटैक जो दरबार साहब से होया साका नीला तारा वो बड़ा प्यारा समा से जो जिन्हें जिन्होंने देखा वेख्या या चल रहा जिन्होंने वो इस सब तरह चंकी तरह जानते हैं उस समय सतसंग जी जिन्होंने पवित्रता गुरसिखी गुरु साहब के प्यार कायम रखने वास्ते जिन्हें कुरबानी दीतिया ने माई भाई बच्चों ने उन्होंने सारे असं जरूर चार तरीक न सारे हाजरियां पर उन्होंने याद करिए उन्होंने चादियां भेट करिए उन्होंने कुछ सीखने वास्ते असं आप ही कोशिश करिए सतसंग जी जून पांच है जन्मदिन प्यारे भाई मुख सिंह जी का उस दिन हाजरी पर महाराज चरणा जी उन्होंने दिखाई हदायतों को असं जरूर कबूल करिए सो जून छे शहीदी संत बाबा जरनैल सिंह जी की उस दिन भी जो उन्होंने साढ़े सारे दुख अपनी चोड़ियाँ पा के शहीद दी सी उन्होंने असं याद करिए असी सारे उन्होंने श्रद्धांजलियां मिलकर भेंट करिए आउण भाई साहब तैयार ने सहज प्रणाम करके सरण करिए वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।
0: वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु रूप साध संगत जी आप जी वडभागी हो जो सतगुरां दी पावन पवित्र हजूरी दे लाही प्राप्त कर रहे हो घरां विच बैठ के अमृत बाणी दे नाल जुड़े हुए हो। आओ समा होया श्री सहज पाठ का अज पावन अंग 296 तो आप अगे श्री सहज पाठ प्रारंभ करने हैं। पावन श्री सहज पाठ 296 अंग तो प्रारंभ हो रहे हैं।

मिल भजियै साध संग मेरे मीत रहाओ। सलोक करूं बंदना अनिक वार, शरण परों हर राय

बिन सहज सगल कलेश आप तजहु गोबिंद भजहु पाऊ भगत परवेश लाभ मिले टोटा हिरे हर दरगाह पतवंत राम नाम धन संचवै साच साह भगवंत उठत बैठत।

जिन मन वसिया सोई पौड़ी तृतीया त्रैगुण बिखै फल कब उत्तम कब नीच नरक सुर्ग भ्रम तौ घणो सदा संघारै मीच हरख सोग।

रचनहार नह सिमरियो, मन ना विचार विवेक, पाऊ भगत भगवान संग, माया लिपत नरंच, नानक बिरले पाई है, जो नर चह परपंच। श्लोक खट शास्त्र ऊचौक है, अंत न पारावार, भगत सोह है गुण गावते, नानक प्रभ कै द्वार। पौड़ी खष्टम खट शास्त्र कह है, सिमृत

निर्मल रीत निरोधर मंत, सगल धर्म पवित्र इसनान, सब मह ऊच विशेख ज्ञान, हर हर भजन पूरे गुरसंग, जप तरिए नानक नाम हर रंग। सलोक नारायण नह सिमरे ओ मोह।

करन न सुनही हर जस बिंद, हिरहै पर दर्द उदर कहताई, अगन न निवरै तृष्णा न बुझाई, हर सेवा बिन ए फल लागे, नानक प्रभ बिसरत मर जमह अभागे। श्लोक दस दिस खो

आवत जात नरक अवतार, हर हर भजन न मन मह आयो, सुख सागर प्रभ निमक न गायो, हरख सोग का

जल थल बन पर्वत पाताल, परमेश्वर तह बसह दयाल, सूखम असथूल सगल भगवान, नानक गुरमुख

आठ पहर नमस्कार, अकथ कथा नह बूझिए, सिमरहु हर के चरण, पतत उदाहरण अनाथ नाथ, नानक प्रभ की शरण। श्लोक दुख बिन से

जन नानक गुरमुख उबरे, जप हर हर परमानाद। महला चौथा। सतगुर हर प्रभ दस, नाम त्याई मन हरी। सतगुर हर प्रभ दस, नाम त्याई मन हरी। नानक नाम पवित हर, मुख बोली सब दुख पर हरी। पौड़ी। तू आपे आप निरंकार है, निरंजन हर राया। जिनी तू एक मन सच ते

सब देखै ब्रह्म इक सोए, निर्वैरा नाल जे वैर चलाए दे, तिन विचहु तिष्ठिया ना कोए, सत

गुर सिखी हर अमृत बीजया, हर अमृत नाम फल अमृत पाया, जम चूहा किरस नित कुरकदा, हर करतै मार कढ़ाया, किरसाणी जम्मी भाऊ कर, हर गोहल बख्श जमाया, तिनका काड़ा अंदेसा सब लाहे ऊन, जिनी सतगुर पुरख ते आया, जन नानक नाम आराध्या, आप तरिया सब जग

जिन अंदर कपट विकार झूठ वो आपे सच्चे वख कढे जजमाले सचियार सिख बह सत गुर पास घालन उड़ियार न लभनी कितै थाए भाले जिना सतगुर

तही प्रकाश हमारा पहो, पटना शहर दिखे पौलयो। तन तन सहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज साहिब कमाल, जिन्हों का प्रकाश पुरब सारे संसार दे विच बड़ी श्रद्धा भावना नाल मनाया जा रहा है, मना रहे हैं। कलगीधर पिता जी जदों साहिब जी का आना पटना की धरती से साहिब जी का प्रकाश होया ते कहते ने पीर भीखण साहब जिहड़ा अंबाले के नजदीक बसदा है, अज सिजदा चढ़दे पासे नूं कर रहा है। नाल दे संगी साथी हैरान हन, अज पीर जी नूं की हो गया है। आपां वेंदे हां क्योंकि इह लहदे पासे नूं सिजदा करदे हन, पर अज पीर भीखण साहिब बार बार सिजदा कर रहा है। जदों नाल दे संगी साथियों ने पूछा, पीर जी की गल, ठीक हो? अज आप जी चढ़दे पासे वल सिजदा कर रहे हो। कहंदे ने जिसनू मैं सिजदा कर रहा हां, इस दुनिया दा मालक, वो अज पटने की धरती ते उसने आना किया है। कोई बंदगी वाली रूह, जुड़ी हुई रूह, जिसनू पता है, जिदे मन विच तरला है कि मैं उस परिपूर्ण परमेश्वर प्यारे नू मिलना है। बंदगी तां आपां सारे करदे हां, पर बंदगी इहो जी होवे जिदे नाल पता लग जाए कि मेरा मालक किथे है, नेड़ा है, दूर ना जाने, नित सारे संभाले, नेड़ा है ना ही दूर। जो इहो जी बख्शिश हो जाए, पीर भीखण साहिब कहिंदे ने 3 महीने तकरीबन लगे ने तुर पए, उस वक्त इतने साधन नहीं सन, तुर के लोकी यात्रा करया करदे सन। तुर पए, तुरे जा रहे हन उस मालक दे कलगीधर पिता जी दे गुण गाउण दे। जदों उत्थे पहुंचे, दर्शनां दी इजाजत मंगी ते नाल कहिंदे ने 2 कुजियां विच परखण लई वी कलगीधर पिता जी वल हथ वधाए ते दोवें कुजियां ते साहिब जी ने हाथ रखना किया। कहे मैं सारे ए अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया कौन पले को मंदी, ऐसे सतगुरु दीन दयाल सतगुरु। कलगीधर पिता जी बाल अवस्था विच उन्होंने निर्णय किया कि असी सारे संसार दे भले लई दोस्त दोखियन पकर पछाड़ो, हमरे सब बैरियन संघारो। जेड़ी बाणी लिखी है उसते नितरे ने दुष्ट दोखियां दा खात्मा कीता ते बाए गही की लाज अस गोबिंद दास तुहार, साड़ी रखिया, साड़ी लाज रखी, हिंदुस्तान दी लाज रखी, पावे अपना सारा ही परिवार कुर्बान कर दिता। दीनन की प्रतपाल करे नित संत उबार गनीमन गारे, दीन आखदे ने जिहदा कोई आसरा ना हो। साहिब नितानिया का तान आए ना जाई थिर सदा, गुरसबदी सच जान। कलगीधर पिता जी ने साडे लई
ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਿਨ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਆਪ ਜੀ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਓ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤ।

मन नू जे कोई सकून शांति दे सकता है वो महाराज का नाम है। और ऐसी कोई पावर नहीं, ना पैसा, ना पदार्थ, ना धन दौलत, ना शोहरत, जे तेरे अंदर कोई चैन ते टिका बख्शिश कर सकता है वो सतगुरां दा नाम है। प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहे। महाराज कह रहे ने तेरी आत्मा दी, तेरे जी जी जी दी जिहो जी भी इच्छा रब ना करे कदे कोई औखा समा भी होवे ना तां भी अरदास कर। अक्सर लोकी दुखां विच ही अरदास करदे ने, सुखां विच ते सतगुरु कह रहे ने दुख तदे जा विसर जाए। दुख तां आउंदे ने जदों तू उन्नू भुल जांदा है। वड्डियां वड्डियां खुशियां विच फिर आपां शुकराना भुल जांदे ने। ऐसे ऐसे परिवार भी मौजूद ने। अपनी बेटी दी मैरिज है, ब्याह है, पर प्यो सारी पार्टियां सारे रिश्तेदार छड़ के अपना नेम निभाण चले जांदा है। सारे रिश्तेदार कहंदे ने किथे चलिया गया, जिहड़े जाणदे सन ओह कहंदे ने वी दुनिया इधर दी इधर हो जाए उन्हें नेम नहीं छड़ना। अपनी बेटी दा ब्याह है पर नेम कुछ समय लई मिलन वास्ते अपना नेम निभाउण चले गए। जदों आए ते पुछया तुसी किथे चले गए सी, ते फिर हाथ जोड़ के नीवी पा के कह दिता जिसने ये खुशियां दित्तियां उहदा शुकर करन दिया, जिन्हें ये विध बनाई उहदा शुकर करन गया सी। सतगुरु कह रहे ने कल्ला खुशियां दा मौका ही नहीं, कल्ले पदार्थ ही नहीं, मन नू भी ऐसी बख्शिश मिलदी है इंज लगदा है वे तू ही बादशाह है, तेरे नालों सुखी कोई नहीं, तेरे वर्गा कोई होर नहीं, जेड़ा सबर चैन तेनू मालक ने दिता वो किसी होर कोल नहीं। एक बारी पावन पंक्तियां कह दियो सारे, मिलदा पता कित्थों है, सो लगा सतगुरु सेव जां को करम तुर, जिन्हां दे कर्मां विच लिखिया होया है सतगुरां दी सेवा, सतगुरां दे वचनां नूं जिंदगी विच कमाउणा।